विप्रधेन सुरसंतहिता लीन मनुजे अवतार विजय इच्छा निर्मित तनु माया गुण को पार सियावर रामचंद्र की जय। श्री अयोध्या राम जी लला की जय। श्री पवन सुत हनुमान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। श्री रमापति रामचंद्र की जय। श्री वृंदावन कृष्ण बलदाऊ जी की जय। बोलो भाई सब संतन।

श्री गोविंद गीता अध्याय 12 भक्ति योग। कुंती पुत्र स्वाभाविक प्रश्न करता है कि हे प्रभु, आपकी सतत सेवा करने वाले व अव्यक्त स्वरूप के उपासकों में कौन अधिक योगविद है। श्री भगवान इस जिज्ञासा का समाधान करते हुए कहते हैं कि युक्ततम व्यक्ति वो है जो दिव्य श्रद्धा से मेरी उपासना करते हैं। हालांकि सर्व जीव कल्याण रत मेरे अप्रकट स्वरूप के उपासक भी अंततः मुझे प्राप्त होते हैं, परंतु यह पथ अत्यधिक क्लेशयुक्त है।

0: जाम दीप जल हल पुर देवता देवन किर दरा बार हो माय माई देवन किर दरा बार हो माय जाम दीप जल हल खंड माता देवन के हो दरा बार हो माय कुन देवता के रचय बिहद्रा कौन बिहाय लय जाय हो माय माई नर बदिया के रचय बिहद्रा सोने बिहाय लय जाय हो माय माई सोने बिहाय लय जाय
1: बहुत पुरानी बात है। अमरकंटक में सोन और नर्मदा का ब्याह तय हुआ था। बारात चल पड़ी थी। नर्मदा ने अपनी नाइन जोहिला को सजा धजा कर भेजा कि जरा देखो तो बारात की शोभा कैसी है। जब कुछ देर हो गई और जोहिला लौटी नहीं तो नर्मदा जी खुद निकल पड़ी खोज खबर लेने। देखती क्या है कि सोन और जोहिला आपस में हंस बोल रहे हैं। बस फिर क्या था, गुस्से में तमतमाती नर्मदा ने मुंह फेरा और चल पड़ी पश्चिम की ओर। फिर तो वो कुंवारी ही रह गई। उधर सोन पछताते चल पड़े पूरब दिशा में। जोहिला भी फिर सोन के साथ होली।
0: ये तनल सुन के माइनर बदिया पाँव पै जनिया जो दे हो माय पाँव पै जनिया ला दे हो माय।
2: कैसी अनूठी कल्पना सजाई है इस लोकगीतकार के मन ने। बात कुछ ऐसी ही है कि शहडोल जिले के एक ही स्थान अमरकंटक से निकली है नर्मदा भी, सोन भी और जोहिला भी, पर ये बहती हैं अलग अलग दिशाओं में।
1: इसी भौगोलिक तथ्य से रचा गया है ये लोक मिथक, जो मध्य प्रदेश में बघेलखंड अंचल में थोड़ा बहुत बदलकर बार बार मिलता है। ऐसी टीस है इस कथा में कि एकदम तरुण हिंदी कवि एकांत श्रीवास्तव की कविता अमरकंटक में भी इसकी गूंज सुनाई पड़ती है। जब फैल जाती है रात की चादर, नींद के धुएं में डूब जाते हैं पेड़ फूल और पहाड़, इसकी गहरी घाटियों में गूंजती है सोन की पुकार, नर्मदा ओ नर्मदा ओ नर्मदा ओ, और पहाड़ों के सीने में ढुलकते हैं नर्मदा के आंसू।
2: विंध्य पर्वत श्रेणी में मेकल पर्वत पर बसा अमरकंटक पहले आम्रकूट कहलाता था। इसकी प्राकृतिक सुषमा का अभिभूत वर्णन महाकवि कालिदास की मेघदूत में भी मिलता है। अमरकंटक शताब्दियों से आस्था और उपासना का पुनीत स्थान रहा है।
1: अमरकंटक के पूर्वी छोर पर है सोनमुड़ा। यहाँ एक छोटे से कुंड से रिश्ते जल के धीमे संकोची और क्षीण प्रवाह को देखकर कौन कल्पना कर सकता है कि यही सोनभद्र है।
2: हमारे पौराणिक भूगोल में तीन को महानद माना गया है, शेष नदियाँ हैं। इनमें सिंधु और ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलते हैं। विंध्याचल से निकलकर भारत के हृदय स्थल यानी हिंदी भाषी प्रदेश में अपने उद्दाम वेग से पराक्रम दिखाने वाला अकेला महानद है सोनभद्र यानी सोन।
3: नमस्ते ब्रह्मपुत्राय सोनभद्राय ते नमः, मेकलोद्भवाय बृहते सर्व पाप हराय च।
1: ये है आग्नेय पुराण वर्णित सोन महात्म्य का शुभारंभ। सोनभद्र को ब्रह्मा का पुत्र भी माना गया है और इसके क्षेत्र को निश्चय पुण्य देने वाला और मंगलकारक कहा गया है।
2: किंतु इस महाप्रतापी सोन को अमरकंटक में शिशु रूप में एक एक डग भरता देखना अनूठा ही अनुभव है। सोनमुड़ा से कुछ ही आगे बढ़कर मेकल पर्वत की खड़ी ढलान पर सोन जैसे उछाल सी भरता है और फिर
4: नीचे लुप्त हो जाता है।

0: इस अमरकंटक क्षेत्र में विश्व विख्यात तपोवन होते हुए भी यहाँ प्रसिद्ध जड़ी बूटियों का भी काफ़ी मात्रा में, जैसे कि ब्रह्मी है और कामराज, तेजराज, भोजराज, बलराज, इस प्रकार जैसे कि शंखपुष्पी है और रुद्रवंती है, गुलबकावली नाम का एक पुष्प है और संजीवनी बूटी भी पाई जाती थी।
1: सोनमुंडा से कुछ आधुनिक ढंग का रिश्ता है यहाँ के विकास कार्य से जुड़े श्री अंबिका प्रसाद तिवारी का।
2: प्राकृतिक दृश्य के बारे में तो जो कश्मीर के बारे में लोग कहते हैं कि कश्मीर है, तो ये कश्मीर है ही। यहाँ मानसून दिन प्रतिदिन बदल जाता है, कभी बदल, कभी बूंदाबांदी, कभी तेज हवा, कभी पानी और कभी हल्की फुल्की गर्मी। भविष्य के लिए तो मेरे ख्याल से ज़्यादा यहाँ विकास करना उचित नहीं है, यहाँ की नेचुरलिटी जो है वो समाप्त हो जाएगी।

0: सोनमुड़ा के नीचे घाटी में लोप के बाद भूमि पर सोन के दोबारा दर्शन होते हैं। पड़ोस के बिलासपुर जिले में पेंड्रा से कुछ दूर सोन बचरवार नाम के गांव में यहाँ एक पक्का कुंड है जो सोन कुंड ही कहलाता है।
1: इस कुंड का जल एक पतली नाली द्वारा बारहों महीने निकलकर खेतों में ही धीरे धीरे आगे बढ़ता दिख पड़ता है। बस शुरू हो जाती है सोन की प्रकट यात्रा। पहले उत्तर, फिर उत्तर पश्चिम और अंततः पूर्वोत्तर दिशा की ओर।
0: ये यात्रा शांति पाती है बिहार की राजधानी पटना से पश्चिम की ओर भोजपुर जिले में मनेर के पास हरदी छपरा के सामने, जहां सोन का संगम गंगा से होता है।

0: उद्गम से संगम तक सोन चलता है 784 किलोमीटर, 500 किलोमीटर मध्य प्रदेश में, 82 किलोमीटर उत्तर प्रदेश में और 202 किलोमीटर बिहार में।
1: यह भारतीय उपमहाद्वीप का 14वां लंबा जल प्रवाह है। इसका कुल जल ग्रहण क्षेत्र है लगभग 71,000 वर्ग किलोमीटर।
0: इस बीच बारी बारी से आकर इसमें मिलते जाते हैं छोटे बड़े नाले और सहायक नदियाँ। सोन की कुछ प्रमुख शक्ति धाराएँ हैं केवई, तिपान, कुनुक, जोहिला, कैमूरी महानदी, बनास, गोपद, रेड या रिहंद, घाघर, कन्हर, पंडा और उत्तर कोइल।
1: समूचे सोन क्षेत्र की भूमि के तीन मुख्य प्रकार हैं, प्राचीन पहाड़ी प्रदेश, पठारी भूभाग और नदियों के रचे हुए मैदान। पहाड़ों में कैमूर कहंजुआ, सतपुड़ा मैकल और भीतरीगढ़ मैकल विशेष उल्लेखनीय हैं।
0: सोन का काफी क्षेत्र अब भी बहुत दुर्गम घने जंगलों तथा वन्य प्राणियों से भरा पड़ा है, जहाँ निवास करती हैं अनेक जनजातियाँ।
1: उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले की जनजातीय जीवन शैली और संस्कृति का विभोर वर्णन करते हुए साहित्यकार और सामाजिक कार्यकर्ता श्री नरेंद्र नीरव।
2: रेणुका सोन के संगम पर अगोरी नाम का स्थान है, जिसे हम इतिहास के विभिन्न चरणों का साक्षी मान सकते हैं। और यहाँ पर सोन सिर्फ विंध्य की एक अप्रतिम नदी ही नहीं, बल्कि इतिहास की साक्षी के रूप में हमारे सामने आती है, जहाँ हम एक तरफ कई करोड़ साल पुराने जीवाश्म सलखम नामक स्थान पर देखते हैं, जहाँ पर अपने आँखों से देख सकते हैं पथराए हुए पेड़ उस काल के, जब यहाँ कभी समुद्र बहता था। उसके बाद हम सोन के ही तट पर देख सकते हैं भारशिव नाग काल के, बुद्ध काल के पहले के भी शैव सभ्यता के अवशेष शिवद्वार में, गौरी शंकर बरेला में, और उसके बाद गुप्त काल के, मध्य काल के चंदेल और गहरवा।

0: हर काल के ऐतिहासिक अवशेष कुंडवासिनी तीर्थ, बंसरा देवी, गौरी शंकर, बरेला, गोठानी तीर्थ, अमिला और आगे जाकर के विभिन्न स्थानों पर राजा नल, कंडाकोट सब सोन के तटों पर बसे हुए ऐतिहासिक स्थल हैं। सोन सिर्फ एक हरी सुनहरी नदी ही नहीं है, इसके तट पर वन्य सभ्यता, वनवासियों की गृहस्थियाँ बसीं आदिकाल से अब तक, बल्कि सोन एक पूरी की पूरी संस्कृति है जो यह बतलाती है कि मध्य भारत में, मतलब गर्म पहाड़ों में, किस प्रकार के लोग किस तरह के जीवन जीते रहे हैं।
1: जनजातीय बोलियों में मुंडारी, खरवारी, बिरहोड़ी, कोरवा, आसुरी, कुड़ुक और गोंडी प्रमुख हैं। आर्य भाषा परिवार की बोलियां हैं छत्तीसगढ़ी, बघेली, भोजपुरी और मगही।
2: सोन के मार्ग में पड़ने वाली मध्य प्रदेश के शहडोल और सीधे जिलों में बघेली ही बोली जाती है।

0: सीधी निवासी श्री बद्रीनाथ श्रीवास्तव इस अंचल में खूब घूमे हैं और एक अनुभव सिद्ध विचार उनके पास है।
1: आज़ादी के बाद से लोगों का दृष्टिकोण बदला है और अब उसको वो एक जीवन धारा के रूप में देखना चाहते हैं कि उससे सिंचाई के लिए पानी मिले, वहाँ पर वन प्राणी वगैरह जो है स्थल ऐसे बने, पर्यटन के लिए कोई स्थानों का चुनाव हो सके।
2: सीधे जिले में ही प्रसिद्ध बगदरा अभयारण्य के पास स्थित है सोन घड़ियाल अभयारण्य। सीधी के जिला वन अधिकारी डॉक्टर जे के उपाध्याय के शब्दों में,
3: सोन नदी में प्राकृतिक रूप से घड़ियाल और मगर पाए जाते थे। उनके आबादी को बढ़ाने के लिए सोन घड़ियाल अभ्यारण्य का गठन किया गया। ये सन 82 से प्रारंभ की गई है। इसमें मुख्यतया दो जगह पर घड़ियाल काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं, भंवरसेन जहाँ के नदी गहरी है और दूसरा हमारा एक स्थल जोगदाहा है जहाँ पर के घड़ियाल काफ़ी मात्रा में मिल सकते हैं। वर्तमान में लगभग इनकी संख्या 124 है। इसमें लगा हुआ क्षेत्र हमारा बगदरा अभयारण्य का है जो कि काले हिरणों के लिए बहुत प्रसिद्ध है।
0: प्रेम, एक निष्ठ समर्पण और शूरवीरता से ओतप्रोत लोरी गाथा का जन्म भी सोनांचल में ही हुआ था, जहाँ से ये लगभग समूचे हिंदी प्रदेश में रूप बदल बदल कर पहुँच गई।

0: लगाए कहत बाड़ा हो दऊ नारायण का बीत पर मालिक दिले हुआ लीलार कहें कि आज इतना नौकाए नदी सोन भद्र पर बा कुल वो पार खुटियावल बा कैसे बरतिया उतर चली गोसाइया।
1: सोनभद्र जिले के मुख्यालय रॉबर्ट्सगंज के निवासी और लोक संस्कृति मर्मज्ञ के डॉक्टर अर्जुन दास केसरी बताते हैं,
2: आपके मध्य प्रदेश बिहार और उत्तर प्रदेश की त्रिकोणीय संस्कृति का एक प्रकार से संगम हुआ है। यहाँ की जनजातियों का मुख्य नृत्य कर्मा है और कर्मा के साथ साथ कोलों का कोलदहकी है। अगरिया जात यहाँ की बड़ी मशहूर जात जनजाति है, उनका अगरही है, मुसहरों का मुसरही है। इसी तरह से और भी जितनी जनजातियाँ हैं उन जनजातियों के अलग अलग नृत्य यहाँ लोकप्रिय हैं। इनसे ये जाहिर होता है कि आदिवासियों का संपूर्ण जीवन, यहाँ की संपूर्ण सोन घाटी की संस्कृति एक प्रकार से संगीत और नृत्य से जुड़ी हुई है। यहाँ कई गाथाएं लोकप्रिय हुई हैं।

0: कोयला, अभ्रक, चूना पत्थर, कच्चा लोहा, बॉक्साइट, चीनी मिट्टी और पायराइट जैसे बहुउपयोगी खनिजों से यह क्षेत्र समृद्ध है।
1: कोयले की बहुतायत के कारण सीधी जिले की बैढ़न तहसील और सोनभद्र जिले में तो जैसे देश की ऊर्जा राजधानी ही स्थापित हो गई है। एनटीपीसी की विंध्याचल वृहद ताप परियोजना के सहायक जनसंपर्क अधिकारी श्री मंजुल तिवारी के शब्दों में,
2: भारत सरकार ने और पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान ये सोचा कि क्यों ना हम पावर स्टेशन वहाँ बनाएं जहाँ पर कोयले की इस तरह की अधिक से अधिक मात्रा में उपलब्धि है। तो इस तरह से सोन घाटी के विस्तृत क्षेत्र में धीरे धीरे विकास की गतिविधियाँ शुरू हुई। कोयले की खदानें NCL के सौजन्य से धीरे धीरे बढ़ती गईं और आज 11 खदानें यहाँ मौजूद हैं। इसके अलावा NTPC ने 3 परियोजनाएं यहाँ पे लगाईं, विंध्याचल परियोजना, सिंगरौली परियोजना एवं रिहन परियोजना, और कुल मिलाकर इसकी जो स्थापित क्षमता है वो करीब 7000 मेगावाट है। इसके अलावा यहाँ पर UP स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के 2 परियोजना यहाँ पे लगाई गई, वो अनपरा और ओबरा।
0: अपने उत्तरार्ध में सोन की 2 प्रमुख विशेषताएं हैं, खूब चौड़ा पाट और गरजता हुंकार भरता तेज प्रवाह। वो नद है ना, सो पुरुष की स्वाभाविक उच्च श्रृंखलता से बार बार अपना मार्ग बदलता रहा है और वर्षा ऋतु में इसकी प्रलयंकारी बाढ़ की स्मृतियाँ पुराने लोगों के हृदय को अब भी कंपा जाती हैं।
1: भोजपुर जिले के पथार गांव के मूल निवासी देव कुमार मिश्र ने वर्षों सोन तट और समूचे सोन क्षेत्र में बीहड़ यात्राएं कर सोन पर एक अप्रतिम पुस्तक ही रच डाली है। कुछ स्मृतियां उनके शब्दों में,
3: वराज बनने के पहले तो सोन बहुत प्रलय मचाता था और पानी आता था ऐसे जैसे बिल्कुल दीवार आ रही हो। रोहतास जिले में एक मुहावरा ही है, हिरणवाह, बैल को हमारे बैल को हिरणवाह हो गया है। कुछ उसका अर्थ इसके सिवा और कुछ नहीं है कि बीमारी से आक्रांत पशु उछल कूद करने लगता है, हर काम में अड़ंगा डालने लगता है। हिरण्यवाह नाम है सोन का ही, दूसरा नाम है हिरण्यवाह। बीमारी जो है वो सोन की प्रकृति को उजागर करता है कि जब बाढ़ आती है तो किस तरह सोन का व्यवहार बिल्कुल अनियंत्रित हो जाता है।
0: ये सहज ही है कि आधुनिक युग में विज्ञान के विकास से उपजी शक्ति का प्रयोग इस प्रचंड जलराशि से मैत्री कराने के लिए किया जाता। बिहार के रोहतास जिले में डेहरियान सोन के निकट इंद्रपुरी में है सोन बराज सिंचाई योजना। लगभग 125 वर्ष पुराने इस योजना की नहर प्रणाली की चर्चा करते हुए डेहरी में पदस्थ जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता मोहम्मद अलाउद्दीन मंसूरी,
4: इस सोन नदी से बिहार क्षेत्र में लगभग 125 साल पहले से सिंचाई की व्यवस्था है, जबकि अंग्रेजों ने डेहरी के निकट एक एनीकट बनाया था और उससे ये पानी लेके नहरों के मार्फत ले जाते थे। इसके बाद जब वो एनीकट बहुत पुराना हो गया तो फिर बिहार सरकार ने एक बराज बनाया वहाँ पुराने एनीकट के लगभग 8 किलोमीटर ऊपर, और वहाँ से फिर ये पुरानी नहरों को जोड़ दिया गया और एक उच्च स्तरीय नहर भी निकाले गए दोनों तरफ ये बराज के, और इससे अब जो है जो ज़िले बन गए हैं भोजपुर, रोहतास और इधर औरंगाबाद और इधर पटना, इन ज़िलों में इससे 5.5 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई हम लोग कर रहे हैं।
1: सोन नहर की सिंचाई प्रणाली में उपलब्ध जल के अधिकतम उपयोग, भूगर्भ जल विकास, उत्पादन और बाजार प्रबंध सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बिहार में सोन कमान क्षेत्र विकास एजेंसी के नाम से एक स्वशासी निकाय गठित किया गया।
0: इसका कार्यक्षेत्र पटना, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, भभुआ, जहानाबाद और पलामू जिलों में है। इस एजेंसी ने सोन बीज नाम से धान के उन्नत बीज का रिकॉर्ड उत्पादन किया है। वृक्षारोपण, जल संरक्षण और मिट्टी की जांच जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी इसने बड़े पैमाने पर हाथ में लिए हैं।
1: इसी नहर प्रणाली के कारण सोन जैसे बिहार की जीवनदायिनी नदी बन गई है। रोहतास जिले के ग्राम पहलेजा के कृषक श्री उदल सिंह कहते हैं,
5: जब से इंद्रपुरी का बांध बंधा है तब से डेहरी ओन सोन से उत्तर और पश्चिम पूरब वाले लोगों को खेती खेती में अच्छा खासा फायदा हुआ है। धान होता है और गेहूं होता है। नहर आने से फसल ज्यादा होने लगा है।
0: सोन की लहरों से ही एक अन्य रूप में जीवन यापन करते हैं मछुआरे।
6: हमारा नाम सुरेश चौधरी है, रहते हैं इंद्रपुरी में। मछली है, थोड़ा बहुत चलवा पोठिया मिलता है सोन में, रीठा बामी मिलता है यहाँ पर, चलवा बहुत थोड़ा बहुत कम मिलता है। एकरे में बाल बच्चा हमारा जीता है खाता है, कभी ज़्यादा मिलता है कभी कम मिलता है। बस इसी में हम लोग का है कि इसी में जीना है मरना है हम लोग का।
0: हाल ही में डेहरी आन सोन में सोन नहर पर जल विद्युत परियोजना भी शुरू हो गई है। परियोजना के अधीक्षण अभियंता विद्युत श्री ब्रज किशोर द्विवेदी।
7: यहाँ सोन वेस्टर्न लिंक कैनाल है जो सोन नदी पर है, उसी पर हम लोगों का यह सोन वेस्टर्न हाइड्रोलिटिक प्रोजेक्ट बना है। इसमें चार इकाइयाँ हैं, प्रत्येक इकाई की क्षमता 1.65 मेगावाट है। यहाँ तीन इकाइयाँ रेदर कमीशन हो चुकी हैं, चौथी इकाई भी करीब करीब तैयार है। सो करीब करीब हमारे चारों यूनिट रेडी हैं। 12 महीना हम लोग इससे, जब भी कनाल में पानी रहेगा तो हम लोग उसमें बिजली पैदा कर सकते हैं। और एक इकाई से प्रतिदिन करीब 40,000 यूनिट हम लोग जनरेट करेंगे।
1: विकास के स्वप्न को सींचने वाली सोन की बहुत ही महत्वपूर्ण निर्माणाधीन परियोजना है बाणसागर बहुउद्देशीय अंतर्राज्यीय परियोजना।
0: मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार तीनों राज्यों के लिए आगत समृद्धि के स्वप्न समेटे इस परियोजना के तकनीकी पक्ष के बारे में बता रहे हैं परियोजना के रीवा स्थित मुख्य अभियंता श्री के अंबाजी राव।
8: इस प्रोजेक्ट में एक है कि ये 63 मीटर हाई डैम है मुख्य बात, और इसकी लंबाई 1020 मीटर है, और इसकी जो कैपेसिटी है इट इज़ 5.1 मिलियन एकर फीट, वो काफ़ी बड़ा है। मध्य प्रदेश में जो चल रहा है वो सबसे बड़ा कैपेसिटी का प्रोजेक्ट है। 56,000 हेक्टेयर मतलब 560 वर्ग किलोमीटर के एरिया में उसका पूरा पानी फैल जाएगा। इसमें ये जो हमारे जो 2 मिलियन एकर फीट पानी हम यूज़ कर रहे हैं मध्य प्रदेश का, उसमें 1.48 मिलियन एकर फीट हम सिंचाई के लिए यूज़ कर रहे हैं, और 0.52 मिलियन एकर फीट हम MPP को दे रहे हैं जिससे वो हाइड्रो पावर जनरेट किया कर सकते हैं। 435 मेगावाट की क्षमता के हमारे कुल ये 4 पावर हाउसेस में इसका होने का है।
0: लेकिन बड़ी विकास योजनाएं अपनी भरपूर कीमत भी वसूलती हैं, आशाओं के साथ आशंकाएं भी उपजती हैं। बाणसागर परियोजना की संभावित डूब क्षेत्रों में आने वाले सतना जिले के ग्राम झिन्ना के श्री भैयालाल वैश्य का मन इन्हीं में डूब उतर रहा है।
9: हम ये सोच रहे हैं कि हमको कम मुआवजा मिलेगा और हम कहाँ जाएंगे। आज 30 वर्ष हमारी उम्र है, हमारी प्रगत करने वाली उम्र अभी है, और हम आगे कहाँ जाकर क्या प्रगत कर लेंगे, अपने हम बाल बच्चे के लिए भविष्य में क्या उन्नत कर पाएंगे।
1: ऐसी ही उथल पुथल बिहार के गढ़वा पलामू जिले के ग्राम बिजड़ी के श्री रघुनाथ दुसाद के मन में भी है, जिनका गांव सोनपुर निर्माणाधीन कदवन जलाशय परियोजना की डूब में आने वाला है।
10: हम लोग को तो लगता है कोई सा गांव अब तो नहीं मिलेगा, हम लोग को तो अफसोस हो ही रहा है। हम लोग को सोन नदी से तो बहुत फायदा है, क्योंकि उन सोन की ढाब से हम लोग पैदा जितना कमा रहे हैं जमीन से वो भी फायदा है।
0: ऐसे में शायद समाधान एक ही है, मानवीय नियति के प्रति संवेदनशील प्रशासकीय नीतियां और उन पर ईमानदार अमल। बाणसागर परियोजना के रीवा में पदस्थ भू अर्जन और पुनर्वास आयुक्त श्री प्रकाश चंद्र के स्वर में गुत्थियों को सुलझाने का विश्वास और धीरज है।
11: जो परिवार अपने सामाजिक परिवेश से विस्थापित होंगे उन्हें बसाने के लिए नए आदर्श ग्रामों की बसाहट का काम पूरा किया जाएगा। आदर्श ग्रामों से तात्पर्य यह है कि वहां हम किसी भी नागरिक सुविधाओं की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जैसे बिजली, सड़कें, पानी, पेयजल और अन्य शिक्षा से संबंधित बातें, इनको हम वहाँ तुरंत निर्मित करेंगे, इनकी पूर्ण व्यवस्था करेंगे। दूसरी बात, शासन ने इन आदर्श ग्रामों में ये रखी है कि प्रत्येक ग्राम में एक विकसित भूखंड जो 50x90 वर्ग फीट का होगा, यह प्रत्येक विस्थापित को दिया जाएगा, जो निःशुल्क दिया जाएगा।
1: औद्योगिक जल प्रदूषण हमारे दौर की एक भीषण समस्या है, सोन भी इससे अछूता नहीं।
0: शहडोल के शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में प्राणी शास्त्र के व्याख्याता डॉक्टर विनय सिंह कहते हैं,
12: मुख्य रूप से जो प्रदूषण के प्रभाव पानी में आते हैं उस प्रभाव के फलस्वरूप पानी का पीएच एसिडिक हो जाता है, पानी टर्बिड हो जाता है और पानी का ऑक्सीजन कंटेंट जो है वो काफ़ी कम हो जाता है।
1: सोनभद्र ज़िले में ओबरा में रह रहे पत्रकार और पर्यावरण चैतन्य संस्था के महासचिव श्री राहुल श्रीवास्तव,
13: हर महीने करीब 50,000 टन राख जो है सोन नदी में चली जाती है। उस राख के बहने से सोन जो है चौपन से पटना तक एकदम प्रदूषित हो गई है।
0: प्रदूषण की समस्या को आधुनिक उपभोगवादी जीवन दृष्टि का दोष मानते हैं रीवा के अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के कुलपति और पर्यावरण जीव शास्त्री प्रोफेसर J.S. राठौर।
14: ये जो अमलाई क्षेत्र है, जो मिल वाले हैं, वो पूरे नदी के ऊपर एक मिट्टी का बांध बना देते हैं। गर्मी के दिनों में पानी कम होता है और मिल को पानी की आवश्यकता ज़्यादा रहती है, तो इन दिनों में तो स्थिति ऐसी हो जाती है कि जैसे मान लीजिए पूरी नदी ही मिल के अंदर पहले चली गई और फिर नीचे जो है जो पानी फेंका गया वो पूरा प्रदूषित पानी ही फेंका गया। मैं तो ये मानता हूँ कि जो पर्यावरण है वो मूल रूप से जीवन शैली और जीवन दृष्टि का प्रश्न है। आधुनिकीकरण ने जो नदियों को जो हम माता और एक दिव्य रूप में देखते थे वो दृष्टि के ऊपर कोहरा एक तरीके से आधुनिक दृष्टि ने किया है और यही कारण है कि हम उनकी पवित्रता को बनाने में उतना उत्साह नहीं दिखा पाते जितना कि हमें दिखाना चाहिए।
0: शायद हमें अब पुनराविष्कार करना होगा अपनी मूल विश्व दृष्टि का, जिसमें जीवन और नदी का अद्भुत तादाद में है। नदी को जैसे जीवन के प्रवाह का ही प्रतीक माना गया है,
1: उसमें सभी कुछ तो है, निरंतरता, अखंडता, दुर्निवार संकल्पशीलता और अविराम गति। आधुनिक चेतना और उपकरणों से संबद्ध होकर इसकी दुर्दमनीय पौरुषेय शक्ति से ऐसी स्थायी मैत्री हम कर पावे
0: कि इसके अंचल में जीवन के उल्लास की लय में बंधे पाऊं थिरकते रहे अनंत तक। जैसा अनंत इसका ओज है, जैसी अविराम इसकी यात्रा है, अपनी ऊर्जस्विता में हमारी अतीत, वर्तमान और भविष्य को स्पंदित करती हुई।

0: शिव महिमा, महिमा।
1: प्रस्तुत है शिव पुराण एवं अन्य पुराणों और उपनिषदों पर आधारित यह कार्यक्रम शिव महिमा।

0: भगवान महादेव की महिमा के पिछले प्रकरण में आपने सुना कि किस प्रकार कुबेर को भगवान शंकर की कृपा का सनातन पद प्राप्त हुआ और किस तरह भगवान शंकर ने कैलाश पर्वत को अपना निवास स्थान चुना। आज के कार्यक्रम में हम आपको कामदेव और रति के विवाह का प्रसंग सुनाएंगे। ये कथा शिव पुराण के रुद्र संहिता के दूसरे खंड में वर्णित है। नाट्य रूपांतरकार और निर्देशक हैं अनिल सूद।
1: महाभाग सूत जी, सृष्टि की उत्पत्ति के पश्चात काल चक्र की गति तो बहुत तीव्र हो गई होगी।
2: हाँ परम ज्ञानी शौनक जी, इस संपूर्ण सृष्टि के संचालन के लिए ब्रह्मा ने अपने मानस पुत्रों को उत्पन्न किया। ये कथा रुद्र संहिता के दूसरे खंड में वर्णित है।
1: इस भाग में कौन कौन से प्रसंग हैं?
2: संध्या एवं कामदेव के जन्म के अतिरिक्त कामदेव एवं रति का विवाह और संध्या का अरुंधति के रूप में मुनि वशिष्ठ से विवाह का प्रसंग इसके मुख्य अंग हैं।
1: मुनिवर सूत जी, इन विवाह प्रसंगों का महत्व क्या है?
2: शौनक जी, ये महाप्रभु की दूरदृष्टि के परिचायक हैं। भावी मानव के जन्म को दृष्टि में रखते हुए इन विवाहों के माध्यम से ही उसके लिए सामाजिक नियमों की नींव रखी गई।
1: अच्छा, फिर तो महा

0: मुनिसूत जी, इस कथा को विस्तार से बताइए।
1: अवश्य महामुनि शौनक। दक्ष आदि प्रजापतियों और देव शिरोमणियों की सृष्टि कर ब्रह्मा अति प्रसन्न हुए तथा स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मानने लगे। भृगु, मरीचि, अत्रि, पुलह, पुलसत्य, अंगिरा, कृतु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद जैसे प्रभावशाली मानस पुत्र उत्पन्न करने के पश्चात ब्रह्मा के हृदय में एक अत्यंत रूपवती नारी उत्पन्न हुई, जिसके रूप लावण्य को देखकर मुनिजनों के मन में भारी जिज्ञासा हुई।

0: अरे ये पति अंदर लावण्यमयी नारी कौन है?
1: मुनिवर आप इन्हें नहीं जानते? ये परम पिता ब्रह्मा जी की मानस पुत्री संध्या है।
0: हाँ देखिए चमत्कार तो देखिए, दिन में ये क्षीण पड़ जाती हैं और सायंकाल में इनका रंग रूप खिल उठता है,
1: तभी तो ये साय संध्या कहलाती हैं।
0: ये निरंतर किसी मंत्र का जाप करती रहती हैं।

0: अरे ये कैसा प्रकाश पुंज है?
1: हाँ मरीची, और इस पुंज में से एक अद्भुत और दिव्य नर प्रकट हुआ है।
0: प्रजापति दक्ष, इसका ओज सहस्त्र सूर्यों के तेज से भी अधिक प्रकाशमान है। अरे देखो तो, इसके विशाल कंध, बलशाली भुजाएं, वज्र समान कठोर बाहु।
1: मुनि श्रेष्ठ भृगु, मानो संपूर्ण सृष्टि का पुरुषत्व इसकी देह में समा गया हो।
0: हाँ, मत वाले गज जैसी चाल, खिले हुए कमल समान नेत्र,
1: करों में पुष्प धनुष और पांच पुष्प बाण।
0: अरे देखो तो, अब वो पितामह ब्रह्मा के सम्मुख नतमस्तक हो रहा है।
2: हे जन्मदाता, मेरा नमन स्वीकार करें।
3: हजर अमर भव।
2: आज्ञा करें, मेरा जन्म किस निमित्त हुआ है, मैं कौन सा कार्य करूंगा?
3: वत्स, अपने इस मोहक रूप तथा इन पांच पुष्प बाणों से तुम नर नारियों का मन मोहते हुए सृष्टि के सनातन कार्य का संचालन करोगे। तुम्हारा ये कर्म सृष्टि का नियामक होगा।
2: जो आज्ञा दे, कृपया मुझे मेरे नाम से भी अवगत कराएं।
3: ये कार्य मेरे ये पुत्र करेंगे।
4: पुत्रो जी पितामह,
3: इस देवात्मा का नामकरण करो।
4: जैसी आज्ञा दे।
0: जन्म लेते ही तुम हमारे मन को मचने लगे हो, अतः मैं ब्रह्मा पुत्र मरीचि तुम्हारा नाम मनमत रखता हूं।
5: अति उत्तम, तुम में लोगों को मदमत बना देने की क्षमता है, अतः मैं दक्ष तुम्हें मदन नाम देता हूं।
0: सुंदर, अति सुंदर।
5: और मदन, तुम बड़े दर्प के साथ उत्पन्न हुए हो, इसलिए दर्पक कहलाओगे, तथा सदर्प होने के कारण तुम्हारा एक नाम कंदर्प भी होगा।
6: अनुज, तीनों लोकों में तुम इच्छा अनुसार रूप धारण कर सकोगे, तुम्हारे समान सुंदर कोई भी दूसरा नहीं होगा। अतः काम रूप होने के कारण मैं भृगु तुम्हारा नाम काम रखता हूं।
2: इतने नाम? मेरे इतने नाम प्रभु?
3: मेरे मन से तो तुम्हारे एक ही रूप का उदय हुआ है, परंतु तुम्हारे इस रूप ने मेरे मानस पुत्रों के हृदय पर जो अपनी छवि अंकित की है, उसी के अनुसार इन्होंने तुम्हें ये नाम दिए हैं।
2: मैं आप सबके सम्मुख नतमस्तक हूं।
3: हे कामदेव।
2: आज्ञा पितामह।
3: मेरा आशीर्वाद है कि बल पराक्रम में तुम समस्त देवताओं से भी अधिक प्रभावशाली रहोगे।
2: विधाता, आपकी ये अनुकंपा मेरे कर्म को बल प्रदान करेगी।
3: तथास्तु। पुत्रो आज्ञा भगवन। कामदेव को सृष्टि के प्रत्येक नर नारी के मध्य सनातन संबंध का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण भी तो बनना है।
1: हे परमपिता, मेरे शरीर से उत्पन्न हुई मेरी दिव्य पुत्री रति अत्यंत रूपवती है, गुण और धर्माचरण में भी वो कामदेव के सर्वथा उपयुक्त है।
3: दक्षराज, तुम्हारा ये विवाह प्रस्ताव हर प्रकार से उत्तम है। कामदेव।
2: आज्ञा प्रभु।
3: तुम दक्ष पुत्री रति का पत्नी के रूप में वरण करो।
2: जो आज्ञा परमपिता।
7: देवी रति, इस मिलन की रात्रि में हमें अपने अनन्य रूप लावण्य का दर्शन तो कराइए। रति, आपके संकोच ने हमें और भी मोह लिया है। आपकी ये लज्जा सृष्टि की हर नारी का आभूषण बनी रहेगी। आप तो वास्तव में विधाता की अप्रतिम रचना है। आपको अपनी पत्नी के रूप में पाकर आज मैं पूर्ण हुआ।
8: देव
7: रति,
8: आपको पति के रूप में पाकर जीवन भी सार्थक हुआ।
7: रति, हमारा ये पावन मिलन आज से हर नर नारी की संपूर्णता का द्योतक होगा। नर नारी के हृदयों में पवित्र प्रेम की लौ प्रज्वलित करेगा
8: और यही प्रेम सृष्टि के सनातन कार्य का उत्प्रेरक बनेगा।
7: देवी, निष्कपट प्रेम मेरा और निष्काम आसक्ति आपका पर्याय होंगे।
8: आप निश्चल प्रेम की अविरल धारा होंगे और मैं उस धारा को ग्रहण करने वाला पात्र।
7: मैं सुर असुर और मनुष्य की भावी उत्पत्ति का साधन बनूंगा और आप मेरी अर्थात काम की साधक होंगी।
8: किंतु देव, यदि कोई सुर असुर अथवा मनुष्य इन पवित्र शक्तियों का दुरुपयोग करे तब
7: तो वो पाप होगा देवी, और उसका दुष्परिणाम उसे भोगना होगा।
8: देव, आपका कथन अत्यंत श्रेयस्कर है।
7: आओ देवी, इस क्षण को भविष्य का बीज तत्व बनाएं।

0: शौनक जी, कामदेव रति विवाह के पश्चात ब्रह्मा जी तथा उनके मानस पुत्र अपने अपने धाम को लौट गए। चहुं ओर आनंद का वास था, परंतु विधि का विधान तो कुछ और ही था। एक बार देवी संध्या के मन में सकाम विचार आ गया।
1: महाभाग सूत जी, उन साध्वी के मन में?
0: हाँ, इस विचार मात्र से वे आत्मग्लानी से भर उठी। पश्चाताप स्वरूप संध्या ने घोर प्रतिज्ञा कर डाली।
2: ये मेरे शरीर में विचित्र सा कंपन क्यों? ये मुझे बार बार उद्विग्न करता कोई अनाम विचार? ये मुझे क्या हो रहा है? मैं इसे संयमित क्यों नहीं कर पा रही? मेरे रोम रोम को सिहराती ये काम भावना, नहीं, ये पाप है। मेरा अपने ही मन पर कोई वश नहीं रहा। मेरा संयम समाप्त कैसे हो गया? नहीं नहीं, मेरा ये शरीर दूषित हो गया है। मुझे इस

0: का त्याग कर देना चाहिए। जिस तन पर, जिस मन पर अपना वश नहीं, वो त्याज्य है। मेरा शरीर त्याज्य है। मैं ब्रह्मा पुत्री संध्या प्रतिज्ञा करती हूँ कि काम को मर्यादित करने के लिए कठोर तपस्या करूंगी, ताकि जन्म लेते ही प्राणियों के मन में काम भाव उत्पन्न ना हो। तपस्या पूर्ण होने के पश्चात अग्नि में मैं अपनी देह की आहुति दे दूंगी।
1: देवी, अपने ललाट पर उभरी चिंता की इन रेखाओं का कारण बताएं देवी।
0: हे श्रेष्ठ ब्रह्मचारी, आवेग में आकर मैंने तपस्या का संकल्प तो ले लिया, परंतु मुने, तपस्या के विधान से मैं अनभिज्ञ हूं। हे ब्रह्म शिरोमणि, कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मुझे तपोभाव की दीक्षा दीजिए।
1: देवी, जिस उद्देश्य से आप तपस्या कर रही हैं, उसे मात्र भगवान शंभु ही साध सकते हैं, अतः उन्हें अपने हृदय में स्थापित कीजिए। एकाग्रचित से केवल उनका ध्यान कीजिए। वे ही सर्वात्मा हैं, वे ही सर्वस्व हैं। उनके पुण्य प्रताप का स्मरण कीजिए।
0: धन्यवाद महामुनि, आपसे उचित मार्गदर्शन प्राप्त कर मेरा चित्त शांत हुआ।

0: देवाधिदेव, आपकी तंद्रा भंग क्यों हो गई?
1: ब्रह्मा पुत्री संध्या के जाप से, देवी उमा।
0: संध्या के जाप से? परंतु प्राणेश, वो तो विगत 4 युगों से इस तपस्या में लीन है। आज यकायक आपका ध्यान उसकी ओर कैसे आकृष्ट हो उठा?
1: देवी उमा, हर बात का एक देश काल निर्धारित होता है। अब समय आ गया है कि संध्या को उसके परिश्रम का फल प्राप्त हो।
0: तो विलंब कैसा महादेव? जाइए, संध्या को प्रत्यक्ष दर्शन दीजिए।
1: जैसी आपकी इच्छा देवी।

मेरे समक्ष अचानक ये प्रकाश पुंज कैसे उत्पन्न हो गया और इसमें से तो स्वयं मेरे आराध्य प्रभु शिव शंकर प्रकट हो रहे हैं। मैं धन्य हुई, मैं धन्य हुई।

0: ब्रह्मापुत्री संदेह, तुम्हारी कठिन तपस्या से हम प्रसन्न हुए। इच्छित वर मांगो संदेह।
1: प्रभु, आप सर्वज्ञाता हैं। मैंने काम को मर्यादित करने के उद्देश्य से ही आपकी आराधना की है।
0: तथास्तु, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि जीवन की चार मुख्य अवस्थाएं होंगी, शैशवावस्था, कौमारावस्था, यौवनावस्था तथा वृद्धावस्था। तीसरी अर्थात यौवनावस्था में ही प्राणियों के हृदय में काम भाव उत्पन्न होंगे। कामोदय की यही निर्धारित मर्यादा होगी।
1: मेरी तपस्या सार्थक हुई भगवान।
0: संदेह, मैं तुम्हें ये वरदान भी देता हूं कि तुम जैसी सती साध्वी तीनों लोकों में और कोई दूसरी ना होगी।
1: मेरे अहो भाग्य देव।
0: मेरा तीसरा वरदान ये है कि एक अति तेजस्वी ब्रह्म ऋषि तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे।
1: पति रूप में? परंतु देवाधिदेव, अपनी प्रतिज्ञा स्वरूप तपस्या सफल होते ही मुझे अग्नि में अपना देह त्याग करना है, यही मेरा अभीष्ट था।
0: संदेह, तुम्हारे अभीष्ट का उत्कर्ष होना तो अभी शेष है। इसी चंद्रभाग पर्वत पर महर्षि मेघातिथि पिछले 12 वर्षों से महायज्ञ कर रहे हैं। इस अनुष्ठान में अग्निदेव अपने पूर्ण भाव से प्रज्वलित हैं। अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने का सबसे अच्छा अवसर यही है।
1: परंतु देव, पति
0: पति, मेरे इस वरदान के रहस्य का उद्घाटन भी वही होगा। ब्रह्मा पुत्री, मेघातिथि का यज्ञ अब अपने अंतिम चरण में है, विलंब उचित ना होगा। चलो।
1: जो आज्ञा देव।

0: प्रभु कृपा से ये तीव्र अग्नि ज्वालाएं भी कितनी शीतल प्रतीत हो रही है। उन्हीं की माया से मुझे अग्नि में प्रवेश करते कोई नहीं देख पाया।
1: हे संदे, अब तुम हृदय में उसकी छवि का ध्यान करो जिसे तुम स्वामी रूप में प्राप्त करना चाहती हो।
0: महादेव, मेरे मन में तो उन्हीं तेजस्वी ब्रह्मचारी की छवि है जिन्होंने मुझे दीक्षा दी थी और आपकी आराधना का मार्ग दिखाया था।
1: तथास्तु, उचित समय पर महर्षि वशिष्ठ ही तुम्हारा पाणी ग्रहण करेंगे। इस समय तुम सूर्य देव का आह्वान करो।
0: जो आज्ञा देवादिदेव।

0: स्वागत है सूर्यदेव।
1: प्रणाम देवाधिदेव, मेरे यहाँ आने का प्रयोजन बताएं।
0: ब्रह्मापुत्री संध्या का भावी स्वरूप आप निर्धारित करेंगे।
1: जो आज्ञा देव। संधे, अग्नि में तपाए तुम्हारे इस शरीर को मैं दो भागों में विभक्त करके अपने इस रथ पर आरूढ़ करता हूँ। आज से संपूर्ण जगत में तुम दो नामों से विख्यात होगी। तुम्हारे शरीर का एक भाग रात्रि और प्रातः का मिलन करवाने वाली प्रातः संध्या कहलाएगा। शेष भाग दिन और रात के मध्य आने वाली साय संध्या के नाम से जाना जाएगा।
2: सूर्यदेव, मेरे इन दो रूपों का कार्य क्या होगा?
1: प्रातः संध्या के मोहक रूप में तुम देवताओं के बीच आनंद और स्फूर्ति का संचार करोगी तथा साय संध्या के रूप में पितरों की प्रसन्नता का कारण बनोगी।
2: जो आज्ञा सूर्यदेव।

0: प्रभु शिव शंकर और सूर्य देव तो विलुप्त हो गए। देवाधिदेव के अंतिम वरदान का रहस्य। ये क्या, मेरे शरीर का आकार और मेरी आयु क्यों घट रही है? मैं युवावस्था से शैशव में परिवर्तित हो रही हूँ। क्या यही है प्रभु के वरदान का रहस्य?
1: वत्स, यज्ञशाला के लिए समिधा की व्यवस्था हो गई?
2: महामुनि, अरुंधति वही लेने गई है।
1: अच्छा, क्या तुमने उसे भेजा है?
2: नहीं देव, आश्रम के हर कार्य के बारे में उसे पता है। वो तो स्वयं ही।
1: ये तो बड़ी अच्छी बात है। वो इतनी कर्तव्य परायण और अपने दायित्व के प्रति सचेत है।
2: हाँ देव, आपने उसे शिक्षा भी तो ऐसी ही दी है।
3: अरे अरे अरे ठहर तो सही, अरे कहाँ भागा जा रहा है? ठहर, अरे पहले तो यज्ञशाला में कुलांचे भरता रहा और अब।
2: अरे क्या हुआ पुत्री अरुंधति?
3: देखिए ना मुनि महाराज, पिताजी का ये प्रिय मृग शावक यज्ञशाला को अपवित्र कराया है, अब उनके कुटिया में जा रहा था।
1: पुत्री अरुंधति, क्यों सता रही हो इसे? अरे अरे अरे देखो ना, कैसे डर कर मेरी गोद में छिप रहा है।
3: ओहो पिताजी, इसने तो आपको भी अपवित्र कर डाला है। पूजा प्रारंभ करने से पूर्व आपको भी पुनः स्नान करना होगा। लाइए लाइए, इस दुष्ट को मुझे दीजिए, इसे मैं अभी स्नान करवा कर लाती हूँ।
1: इसे स्नान? परंतु क्यों पुत्री?
3: पिताश्री, आप ही ने तो सिखाया है कि पवित्र स्थान पर जाने से पूर्व व्यक्ति को स्वयं को शुद्ध करना चाहिए।
1: किंतु ये तो मृग शावक है।
3: तो क्या ये किसी अपवित्र स्थान से नहीं आ सकता? लाइए दीजिए इसे।
1: लो लो, इसे ले जाओ पुत्री।
3: करूं करूं तेरी पिटाई? अरे तुम्हें तो आश्रम के नियम ज्ञात है, फिर भी तुम हटो क्या करते रहते हो?
1: हे प्रभु, मैं क्या करूं?
2: क्या हुआ गुरुदेव, आप इतने गंभीर क्यों उठे?
1: प्रिय शिष्य, अरुंधति की ये बढ़ती धर्म परायणता मुझे चिंतित कर रही है। उसके हृदय में धर्म के लिए जो स्थान है, उसमें सांसारिक जीवों के प्रति प्रेम का कोई अवकाश नहीं। भावना विहीन हृदय सांसारिक दृष्टि से पूर्ण कैसे हो सकता है? कहीं वो निर्दिष्ट सांसारिक कर्मों से विमुख ना हो जाए।
2: गुरुदेव मेघातिथि, अनुमति हो तो मैं कुछ कहूं?
1: कहो शिष्य।
2: पुत्री अरुंधति का विवाह ही उसे सामाजिक नियमों का पालन करने को प्रेरित कर सकता है।
1: ये विचार तो कई बार मेरे हृदय में भी आया है, परंतु।
2: परंतु क्या मुनि श्रेष्ठ, हमारी अरुंधति तो सर्वगुण संपन्न है।
1: यही तो समस्या है, उससे अधिक गुणी और योग्य पति कहां मिलेगा?
2: महामुनि, जिन खोजा तिन पाइया, खोजने से तो प्रभु भी मिल जाते हैं।
1: उत्तम, अति उत्तम, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। अब तो मेरी चिंता का निवारण मेरे आराध्य ही करेंगे। अरे त्रिदेव, एक साथ मैं धन्य हुआ।
4: मुनि मेधातिथि, तुमने हृदय से स्मरण किया तो हम उपस्थित हो गए।
1: आप तो अंतर्यामी हैं प्रभु शिव शंकर।
5: मेधातिथि, हमें तुम्हारी चिंता का कारण ज्ञात है।
4: परमपिता ब्रह्मा जी के मानस पुत्र वशिष्ठ हर प्रकार से पुत्री अरुंधति के योग्य हैं।
1: भगवान,
5: और अरुंधति भी उन्हें पति रूप में पाकर शोभायमान होगी। हाँ,
6: श्रीहरि का ये कथन सत्य है मुनि मेधातिथि। यही काल की नियति तथा अरुंधति के पूर्व जन्म में उसे महादेव से प्राप्त आशीर्वाद भी है।
1: जो आज्ञा त्रिदेव, जो आज्ञा।
7: और महामुनि सूत जी, इस प्रकार वशिष्ठ और अरुंधति का विवाह संपन्न करवाकर महादेव ने देवी संध्या को दिए वरदान को सार्थक कर दिया।
5: महात्मन सूत जी, कामदेव और संध्या की उत्पत्ति से लेकर वशिष्ठ अरुंधति विवाह तक का यह प्रसंग अति रोचक ही नहीं ज्ञानवर्धक भी था। फिर क्या हुआ मुनिश्रेष्ठ?
7: शौनक जी, आगे की कथा अर्थात दक्ष कथा बहुत विस्तृत है, उसे भी अवश्य सुनाऊंगा, परंतु कुछ अंतराल के पश्चात।
5: जैसी आपकी इच्छा महाभाग सूत जी।

47.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज से असीं आकाशवाणी के जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। इस वेले शाम के 4:30 बज रहे ने। आओ हुण असीं श्री दरबार साहिब अमृतसर तो शब्द कीर्तन का सीधा प्रसारण सरवण करते हैं।

0: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शब्द कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना।

लक्ष्मण का समझाए के राम बढ़ौले पाँव, सीता लक्ष्मण रह गए पंचवटी के छाँव। सीता जी की मांग पूरी करने के लिए प्रभु श्री राम स्वर्ण मृग के पीछे चल पड़ते हैं और प्रभु राम का तीर लगने पर मारीच राम जी की आवाज़ में हाय लक्ष्मण पुकार उठते हैं। यह सुन सीता घबरा उठती हैं और गुस्से में जानकी जी लक्ष्मण को कठोर वचन कहते हुए प्रभु राम को खोजने के लिए वन की ओर भेजती हैं। उसके पश्चात साधु के वेश में रावण पंचवटी में सीता से भीख मांगने पहुंचते हैं।

राजभवन और उसके बाहर नगर में भी उत्सव का रंग छाया हुआ है। राग रंग के उत्साह से भरे पुरवासी आते जाते दिखाई देते हैं और स्त्रियां नृत्य करती और गीत गाती दिखाई देती हैं।

लक्ष्मण रेखा पार करने पर रावण असली रूप धारण करके सीता का हरण करते हैं। अब राम लक्ष्मण पंचवटी पहुंचकर सीता को ना पाकर विलाप करते हुए घायल जटायु से मिलते हैं। गिद्धराज राम लक्ष्मण को सीता हरण की दिशा बताते हैं और सीता की खोज करते हुए दोनों भाई शबरी के आश्रम पहुंचते हैं। यह देख शबरी अत्यधिक भक्ति में लीन हो जाती हैं।

राजभवन का आंगन किलकारियों से गूंज उठता है। चारों भाई घुटनों के बल चल रहे हैं, माताएं बलैया ले रही हैं और राजा दशरथ झुनझुना बजा रहे हैं।

इधर मुनि विश्वामित्र अपने आश्रम से अयोध्या की ओर प्रस्थान करते हैं और राज दरबार जहां मुनि का स्वागत हो रहा है।

बाल कृष्ण की प्रीत में तन्मय हर गोपी दिन रात कान्हा के ही सपने देखती है। मुरली मनोहर कृष्ण कन्हैया ग्वाल बाल संग गोकुल में गैया चराते, बंसी बजाते, माखन चुराते और गोपियों संग रास रचाते हुए मनमोहक लीलाएं करता है। यमुना किनारे सांझ सकारे जब गोपाल मुरली की मधुर मधुर धुन छेड़ता है, तब गोपियां सुध-बुध खो बैठती हैं। कृष्ण भक्त गोपी राधा नंदलाल से प्रीत तो कर बैठी, मगर उसे चिंता सताती कि कहां त्रिभुवन का स्वामी सर्वव्यापी नारायण और कहां वो ब्रज की एक साधारण सी गोपी। वो ध्यान में मग्न बंसी बजैया से पूछती रहती, हे गोविंद बांके बिहारी तू ही बता कैसे निभेगी प्रीत हमारी।

पर रुक कर कन्हैया मुस्कुराकर बोले, हाँ मैया, मैंने ही माखन खाया। ऐसी बातें सुनकर माँ यशोदा कहती है कि अपने घर में क्या कमी है जो तू दूसरों के घर में जाकर माखन चुराता है। दूसरों की मटकी तोड़ने की तुझे क्या आवश्यकता। भगवान मैया को मटकी और माखन का रहस्य कैसे समझ

यशोदा मैया आश्चर्य से उन्हें देखने लगती है और कहती है, कन्हैया क्या तू सच बोल रहा है? कृष्ण कहते हैं, हाँ मैया, मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ ग्वाल बाल के रूप में कई देवता भी थे। माँ तू तो बड़ी भोली है ना, तू उन्हें पहचान भी ना सकी, मैं तुझे सब

नवदुर्ग। पहलू स्वरूप छे एमा शैलपुत्री। नवरात्रना नव दुर्गाओना स्वरूप मा प्रथम स्वरूप शैलपुत्री। आ शैलपुत्री पार्वती देवी छे। शैल पर्वतोना अधिराज हिमालयना पुत्रीनु पार्वती नाम छे, ये तो जाणीतुं ज छे। अने ए पार्वती शैलपुत्री। गिरिराज हिमालयना आ पुत्री पार्वती देवी जो कि सौना अधीश्वरी छे, तो पण हिमालयनी तपश्चर्या अने प्रार्थनाथी प्रसन्न थईने तेमना पुत्री तरीके प्रगट थया, तेथी आ शैलपुत्री एम कहेवाय छे। शैलपुत्री नवदुर्गाओमां प्रथम क्रममां आवे छे। એમનું વંદન આ રીતે થયે।

शैलपुत्रीं यशस्विनीं। अर्थात वृष बळर उपर विराजेला, त्रिशूल ने धारण करणारा, जमना मुगटमा अर्धचंद्र से एवा यशस्विनी शैलपुत्री हिमालय तनयाने मारा मनोरथनी सिद्धिने माटे वंदन करू छु। जो कि आ महादेवी सर्व जगतना अधीश्वरी छे, तो पण हिमालयनी तपश्चर्या अने प्रार्थनाथी प्रसन्न थई एने त्यां पुत्री रूपे प्रगट थया, तेथी ते शैलपुत्री कहवाया छे। नवरात्रना आ प्रथम दिवसे नवदुर्गामां शैलपुत्री ने वंदन करीने अपने कृतार्थ थी। ओम शांति ही। तो पछी आ महान महान एवा सुपर्वना समय राष्ट्रना मंगल माटे, विश्वना मंगल माटे अने सौना कल्याण माटे चालो अपने सर्व देवीमयी दुर्गानी वंदना करी। ओम

भवभञ्जन भवभञ्जन गुण भवभञ्जन गुण राम अपन राम अपन

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।